याज्ञा करामः। सर्वबलधारिणो अनाद्य अनन्तो दिव्येनि मोक्षाम्पन्न मातावन कन्यमरियतुमन्गे गतः प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक् वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतुयुक्त कर दी वदाला वेद। अप सतुटु सिहिकरन ओतुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसो मनव मे की दे अपगे स्वामी ओ जेसु क्रिसु सहसे उदिसाम अपट लबेवा आमेन।

ये आज्ञा करम है। सर्व बलदारियो अनाति अनंत देवियनी मोक्षांपन मातावन कान्यमारिय तुमांगे गतहा प्राणय ओबिगे श्री कुमारे अटोबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहिकरनो तुमियगे दयाबरे आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुर वलिन हा अनवरत मरनेन गलवीम सलसो मेनव मेकी दे अपगे स्वामियो जेसु क्रिसु सुहांसे उदिसाम अपट लेबेवा आमेन।